महल मंदिर घर हर का तिस है राखी जोत अपार तिस है राखी जोत अपार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, कीर्तन द्वारा असी श्रवण कीता है हरमंदर दी महिमा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिन्ह ने इस धर्म दी इस गुरमत मार्ग दी आरंभता कीती है उन्हां ने सानू यह गल समझाई है कि वाहिगुरु अकाल पुरख दा मंदर केड़ा है। सतगुरु कहिंदे हन काया महल मंदर घर हर का तिस में है राखी जोत अपार। कहिंदे ने इह जिहड़ा शरीर है ना इह उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा मंदर है, उस दा घर है, उस दा महल है। इस दे अंदर उसने अपनी जोत रखी है। रोज पढ़दे हां सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानण सब मैं चानण होए। इसे तरह गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी बचन कीता। सतगुरु कहिंदे ने हर मंदर एह शरीर है। इसे ही शब्द विच गुरदेव कहिंदे ने हर मंदर एह जगत है। बहुत सारे प्रमाण इस दे संबंध विच दिते जा सकते ने, लेकिन प्रमाण देण नालों इस भाव नूं इस विचार ते सिद्धांत नूं समझना बहुत जरूरी है। सतगुरु इस विश्वास विच नहीं हन कि कोई एक जगह कोई एक इमारत वाहिगुरु अकाल पुरख दा घर हो सकती है कि सिर्फ उत्थे ही रहिंदा होवे। नहीं, उन्हां दी दृष्टि विच समुचा संसार सारी सृष्टि उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा घर है। इस दे कण कण विच उस दा वासा है। इसे विचार दी व्याख्या करदिआं भाई नंद लाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कीता। भाई साहब कहिंदे ने उस मनुख नूं जिहड़ा भ्रमण करदा है रब दा घर लभण लई, कदे किते जांदा है कदे किते जांदा है, भाई साहब कहिंदे ने चिरा बेहूदा मेगर दी बसहरा ओ बदश्त ऐ दिल चूआ सुल्तान खूबा करदा अंदर दी दा मंजिल हा। कहिंदे ने रब ते तेरे अंदर वसदा ते तू बाहर नठिया फिरदा है, रब ते तेरे घर विच है ते तू लभदा फिरदा है।

आखण लगा बहुत मुश्किल हो गई। मनुख बनाया है ते नित नवे सवाल नित नवे प्रश्न खड़े कर देंदा है। ऐसी चीज बना बैठे हैं कि ए बा आराम सानू भी नहीं रहन देंदी। की करिए, कोई हल कोई वसीला लभना चाहिए। किथे लुका, जिथे जावांगा इसने भाल कर लेनी है। मशीनरी एहो जी है, बनतर ऐसी है कि इसने खोज ते तलाश की दुनिया विच दूर तक पहुंच जाना, मैं किथे लुका। तो कहन लगे एक बुजुर्ग ने सलाह दिती, आखण लगा इंज करो, इस मनुख दे अंदर वड़ जाओ, इस नालो सुरक्षित होर कोई थां नहीं। इन्हें बाहर भालदे फिरना ते तुसी अपने आराम नाल अंदर टिकाणा कर लियो। एक कहानी है मनुख नूं समझाउण लई कि परमात्मा किते दूर नहीं बैठा, परमात्मा ते मनुख दे अंदर है। इसे करके सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ते उस तों पहले गुरु साहिबान ने हरिमंदर दी रचना कीती ते सानू शायद बहुतिया नूं भुलेखा पै गया कि गुरु साहब ने भी एक रब दा घर बना दिता जदों जिवें बाकी धर्मां ने बनाया। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब उत्ते सवाल उस वक्त दे सिखां ने भी कीता सी। आखण लगे गुरदेव तीर्थ ते पहलों ही बड़े ने, मंदर तां पहलों बहुत ने, इमारतां तां रब दियां पहलों भी बड़ियां लोकां ने बनाईयां ने, ते तुसी ये सिरजणा कर रहे हो, तुहाडा मंतव की है? सतगुरु सच्चे पातशाह आखण लगे, भाई मनी सिंह जी ने इस वार्ता का जिक्र किया है, कहिंदे ने गुरदेव समझा रहे ने सिखां नूं। आखण लगे भाई ये जो तीर्थ असी रच रहे हां, ये जो मंदिर असी बना रहे हां, ये नाम दा तीर्थ है, ये भगती दा तीर्थ है। इथे मनुख आएगा ते उस नूं ये विवेक ये ज्ञान प्राप्त होवेगा कि वाहिगुरु अकाल पुरख सृष्टि दे कण कण अंदर मौजूद है, तेरे अंदर भी मौजूद है, असल हर मंदिर ते तेरा अपना आप है। ये मंदिर इस लई बनाया है कि मनुख ए विश्वास लैके ना जाए कि रब इथे वसदा है, बल्कि मनुख ए विश्वास लैके जाए कि रब समुची सृष्टि दे अंदर वसदा है। इसे करके सतगुरु जी ने एक बारी समझाउंदिया ए गल भी कही सी, आखण लगे जिहड़ा सरोवर है ना, एक प्रतीक है, एक सिंबल है इस गल दा कि ए संसार समुंदर है, भवजल है, ते इस समुंदर नूं मनुख ने पार करना है। ते ए जिहड़ा मंदिर है जिन्हूं हरिमंदर कहिंदे आ, ए इमारत इस गल दा प्रतीक है कि इस दे अंदर, इस भवजल संसार समुंदर अंदर एक बेड़ा है, एक बोहित है मनुख दा शरीर, ते इस बोहित नूं चलाउण वाला इनू चप्पू केड़ा है, मलाह केड़ा है? वाहिगुरु अकाल पुरख दा नाम। इसे करके एदे अंदर निरंकार दी, वाहिगुरु अकाल पुरख दी कीर्ति तो बिना कोई दूजी गल धरी नहीं गई, कोई दूसरी गल पाई नहीं गई। ते मनुख नूं ए गल समझाई गई, पर बंदा बड़ा होर तरह दा, हुण ते गल ही बिल्कुल उल्ट बन गई। जे गोल्डन टैंपल आखो ते फिर बंदे नूं पता लगदा, जे स्वर्ण मंदिर कहो ते फिर बंदे नूं पता लगदा, ते खिमा करना हरिमंदर कहो ते शायद बंदे नूं पता ना लगे भी गल की है, क्योंकि असी समझदे हां भी सोना लग गया, इस करके शायद बहुत कीमती हो गया। जे सोना ना भी लगदा ते इहदी कीमत उसे तरह बरकरार रहनी है, इहदी कीमत उसे तरह वधिया रहनी, चंगी रहनी है, क्योंकि इहदा मनोरथ बड़ा स्पष्ट है। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ अपने आप नूं पड़तालना पएगा कि बहुत वारी असी जाने आ ते अंदर मत्था टेक के आ जाने, जे किसे बंदे नूं पुछो भी उत्थे शब्द केड़ा रागी सिंह पढ़ रहे सी, ते खमा करना बहुते बंदे दस नहीं सकणगे, क्योंकि ध्यान सिर्फ इमारत तक है, ध्यान सिर्फ अपनी भेटा तक है, ध्यान मनुखां तक है। लेकिन माफ करना, सतगुरु सच्चे पातशाह ने आदर्श निश्चित कीता सी कि इस मंदिर दे अंदर अगर कोई मनुख प्रवेश करेगा ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटाओ सिमरो।

कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जदों दिल्ली आ रहे सन तां कुरुक्षेत्र दी पवित्र धरती तो लंघे तां पंडित लाल चंद जो मन्या परमन्या विद्वान सी जदों सुनिया के श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी आ रहे हैं ते बाल अवस्था है विद्या दा हंकार होन करके कहन लगा एक बच्चा पांच सत साल दा गुरु नहीं हो सकता। चलो वेखिए पूछिए एडा लंबा नाम किवें रखा दे। द्वापर युग दे भगवान कृष्ण ने भी श्री कृष्ण नाम रखवाया है। इना ने श्री गुरु हर कृष्ण साहब रखाया है। ते आके जदों दर्शन कीते दर्शन करके ता मन निहाल हो गया ते पूछन लगा महाराज भई भगवान कृष्ण द्वापर युग दे अवतार होए हन उना ने श्री कृष्ण नाम रखाया सी और गीता दा उच्चारण कीता सी ते आप दा नाम भी श्री गुरु हरकृष्ण साहब है ते कम से कम तुसी गीता दे अर्थ ही करके विखा दियो उच्चारण करो श्री कम से कम गीता दे अर्थ करके विखा दियो। गुरु हरकृष्ण साहब अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाइए जिन्हां नूं 14 लोकां दी खबर होवे जिन्हां दे हिरदे विच निरंकार दी जोत जग रही होवे उन्हां लई की मुश्किल सी। मन विच सोचिया जे मैं अर्थ कर दिते ता मन विच सोचेगा कि हो सकदा है छोटे होंदिया किसी पंडित कोलों अर्थ पढ़े होन ते कहन लगे भाई असी की करने आन अर्थ तू कोई अपना बंदा लिया ये अर्थ ता उदे कोलों भी करवा देंगे गुरु नानक दी बख्शिश नाल। उच्चारण करो श्री सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। इस पंडित ने एक चीवर मेहरा जो महामूर्ख सी जिदे मुख तो कोई शुद्ध बचन भी नहीं सी निकलता थर थराउंदा सी गल कर दिया उनू ले आया कहन लगा महाराज जे कराउने जे ता एदे कोलों कराओ अर्थ। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने जो छोटी जी छड़ी हाथ विच रखदे सन ते उस जीवर दे सिर ते रखी ते अगम निगम दी उसनू सोझी हो गई ते ऐसे गीता दे अर्थ सुनाए जो पंडित ने कदे अपने जीवन विच सुने नहीं सन। ज्यों ज्यों अर्थ सुनदा है नैना तो जल जा रहा है और उस सोहनी मूर्त विचों भगवान कृष्ण दे दर्शन हो रहे हैं। उच्चारण करो श्री चरणा ते टह पिया महाराज मेरी भुल बख्शो मेरे ते कृपा करो। कितना ही समा पंडित लाल चंद सतगुरां दे नाल ही रहा ऐसियां बरकतां जिस पासों अर्थ कराए सी ता नाम छज्जू सी ते गुरु ने ऐसी मेहर कीती के एक मेहरा छोले पुन्नन वाला अर्थ कर देवे। पर गुरु लई ए केड़ी वड्डी गल है जदों ऐसा कौतक वेख्या ता जमीन आसमान सारे ही गूंज।

हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जदों दिल्ली विच पहुंचे हन तां सारे शहर विच बीमारी फैली हुई सी। कोई घर दा जी ऐसा नहीं सी जिहड़ा बीमार नहीं सी। ते फिर सतगुरां दे पास आके बेनती कीती, महाराज कृपा करो अपने चरणा दा अमृत बख्शो तां के सुख वरते। जेड़ा जेड़ा भी सतगुरां दे निके निके सोहने चरण माई चरण गुर मीठे चरण धो के लै जांदा अमृत अरोग हुंदा जा रहा। एडियां पीड़ां लग गईयां, लाइनां लग गईयां, हुण सतगुरु कल्ले। इसलिए फिर हुक्म होया, भाई एक छोटा जिहा चबच्चा बनाओ ते उहदे विच चरण धो के अमृत पा दिओ। जिहड़ा भी इथों अमृत लै जाएगा दुख भज जाणगे, दुखां दे डेरे टह जाणगे। ते फिर लखां दा आपने उधार कीता, लखां नूं अरोगता बख्शिश कीती। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिगन न को लागे जांकी प्रभ आगे अरदास। जितने तक जमीन असमान हन भाई, जो भी कोई उथों अमृत लेगा तन ते मन अरोग हो।

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तुआने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने मजदूरां वाले कपड़े पा ले एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां करो अठ घंटे कम करना पेगा ठीक है करांगे मजदूरी तय हो गई जितना कम अठां घंटिया विच करना सी चौं घंटिया विच कर दिता एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो वचन होया है ओ ही लवां कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं ऐसे बंदे ता मिले नहीं खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया कल आपां भी चलांगे भाई बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे अज भी भाई काम मिलेगा ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन ए कोई फरिश्ते नहीं ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं ते जदों वेखद्यां वेखद्यां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया कहन लगा तू मजदूर नहीं है ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको कुछ सिख लंघ रहे सन उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

पर नाम तो बिना रोंदे ही चले गए। अदम बादशाह बलख बुखारे दा बादशाह सी

लीजे संग न चालस तेरे तना। ए जीव, ए तन, ए माया, दौलत तेरे नाल नहीं जान, एने तेरा साथ नहीं देना। सह पंचम पातशाह फरमान कर देने संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। ए मूर्ख मन, क्यों तू माया दे विच उरजिया वे, क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए, अपनी सलीयत नु भुली बैठा है, माया ने ते तेरे नाल ही नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत। क्यों बद शीशा लै, बद दुआ लैके माया नु अकत्र कर रहे, माया कठी ना कर। ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं, निर्दन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे कितना तरे, निर्दन नु कोई आदर भी नहीं देंदा, माया तो बिना गुजारा नहीं। पर सैम आख देने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनू परमेश्वर दा ना ना भुला दे, तेनू वाहिगुरु भुल ना जावे, माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी। सैम फरमान कर देने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत। जिस माया नू तू अकत्र कर रहे उस माया तेरे नाल नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। इस जुग में शोभा नाम की, पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी, कहिंदा माया दे नाल ही सब कुछ है। जी माया ते जहान है, जी माया ते साख संबंधी ने, जी माया ते रिश्तेदार ने, जी माया ने ते तिया पुत्र ने, नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नु कुछ समझदा है, माया तो बिना कदर ही नहीं। पर सैं फरमान कर देने जीव ना इस जुग

दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जेको जन्म मरण ते डरे सद जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, केंद्र जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो वो किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रस्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नु जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र दा जाप करो, साधु ए मार्ग दसते हैं। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत, सिंपल गल, आसान गल। साधु ने यह नहीं क्या मेरी पूजा करो, यह नहीं क्या कोई मेरा मंत्र जपो, साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा। वो कहेगा गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दे नाल जुड़ेगा, प्रपेयर करेगा, समझाएगा, घड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझने वाला है, साधु ने यह नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहते गुरु दा मंत्र जपो। साध साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझने वाली है, गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र मिलया है, जिसनू गुरु मंत्र मिलया नहीं है वो गुरु मंत्र जपण दा अधिकारी नहीं हुंदा, उसनू अधिकार नहीं हुंदा। उस दे गुरमंत्र जपे दी कमाई दा जिम्मेवार गुरु नहीं हुंदा जिसने गुरु तो गुरमंत्र नहीं लिया। अते महाराज जी आखदे हन जो इंसान जीवन दे विच गुरमंत्र प्राणी, जो भी प्राणी गुरमंत्र तो हीणा है, गुरमंत्र तो सखणा है, कहिंदे गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कहिंदा कहिंदे हन ओदा जन्म त्रिकार है, लहनत है उस दे जन्म दे जिसने हाले गुरमंत्र नहीं लिया, ते प्रश्न है ओदा जन्म पृष्ठ है, विकार है। गुरमंत्र हीण जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, अगे कहिंदे हन कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका तुल खल है। कहिंदे ओ इंसान एना जूना दे विच पवेगा, कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, सर्पन है, काका है, कुकर है मैंने कुत्ते, सूकर है मैंने सूर, गर्दभ है मैंने गधे, सर्पने सप कां। कहिंदे ओ इना जूना दे विच इंसान जाएगा जिस इंसान ने गुरु दा मंत्र नहीं लिया, गुरमंत्र तो खाली है, गुरमंत्र तो सखना। तो साडे वास्ते इत्थे दो चीजां क्लीयर हो रही हैं। नंबर एक, साधु एक ही रस्ता दसदा है कि गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दा मंत्र जपो, जे को

अपनी नुकरानी नु बहुत मार रही। मन विच दर्द आया, बाबा जी इधर नु गए, ज्यों ही पौड़ियां दे अगे

संगियो फरीद जी ने अखां मूंद लईयां। ऐ मेरे प्रभु आ देख तेरी दुनिया ते किड्डा किड्डा फर्क है। इको जे सारे इंसान इको जे सब दे हाथ पैर ते किसे नू तू नौकर ते किसे नू मालक बना देता है। एक अमीर दी अख विच दर्द होया ते गरीब

कान्हा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा और कांधरा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करती है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा दिता कि माया दे सारे जतन किसे काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हैं अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका बाजी सुर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद तुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।

निरंकार नरहर निधान निर्वैरति अय्य नारायण निर्वाण नाथ मन अनदिन गाय नरक निवारण दुख दलन जप नरक न जाइए सच

सहज से सारन जाए कर्मी सहज नाज बजाए बिन सहज से सान जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मली रहे कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो